0: सस्ता।
1: रिलायंस फाइनेंस लिमिटेड वित्तीय सेवा को और को परिभाषा
2: समुदाय का लागी समुदाय को आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ट्ज।

0: 你呀 ！Extreme Energy Drink，
1: 哈哈哈哈哈！谁的第三名？
2: 阿迪卡里索德
1: ，Better Friends，
2: 阿迪卡里索德
1: ，Tara Pitin，
2: 阿迪卡里索德
1: ，Kyle Marvel，
2: 阿迪卡里索德。
3: ए दाई के को नारा बाजी हो दाई
4: अधिकारी सप्लायर्स को बारे में जानकारी दिदै हिडेको बहिनी
3: के हो ल न त हामीलाई नि भन्दिनु न
4: ल सुन्नुस् बहिनी बर्जर रङको आधिकारिक विक्रेता अधिकारी सप्लायर्स मा धारा फिटिङ सेनेटरी नेपाटप को पीपीसी पीपीआर सीडीसी पाइप ट्याङ्की ट्वाइट को प्यान पानी तान्ने मोटर कालो पाइप मार्बल ग्रेनाइट टाइल पाइनको साथै पाइप फिटिङ मा 50 वर्ष ग्यारेन्टी बाथरूम फिटिङ मा 10 वर्ष ग्यारेन्टी र दक्ष प्लम्बर तथा पेन्टरहरु द्वारा पाइप फिटिङ र पेन्टिङ सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गरिन्छ नि
3: हो र दाइ ल त्यसो भएमा पनि उतैतिर लागे
4: ए सुन्नु त बहिनी त्यहाँ अर्डर अनुसार डीडब्ल्यूसी प्लास्टिक को ह्यान्ड पाइप पनि पाइन्छ है
5: अधिकारी सप्लायर्स नीलकण्ठ नगरपालिका तीन पुछार बजार धादिङ किलो बोर्डिङ नजिकै प्रोप्राइटर त्रिलोचन अधिकारी र माधव अधिकारी सम्पर्क फोन नम्बर 01052148638 मोबाइल नम्बर 98409946356
6: समुदायका लागि समुदायको आवाज रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज

को घम्मा पारे धाई कर बनी ओय ओय ओय ये माँ बम क्या मुझे डालने तार को घम्मा पारे धाई कर बनी ओय ओय ओय ये माँ बम क्या मुझे डालने बच्चों माया पाई